क्योंकि जाना बनदा भी सी मेरा साडे बिताए पल ना भुलण वर्गे ने मैं बड़ा मना के वेख लिया बड़ा समझा के वेख लिया हुण बस हो गई है मेरी मैं नहीं करवा सकती होर बेइज्जती।

0: यूथ जस्टिस वर्कर दे तौर ते तुसी हिरासत विचले नौजवानां दी सहायता करोगे। ए एक सुरक्षित नौकरी है जिस विच तनखाह समेत ट्रेनिंग अते तरक्की दे मौके शामिल हन। जे तुसी एक सहायक टीम नाल सफल अते संतुष्टि भरे पेशे दी भाल कर रहे हो ता यूथ जस्टिस करियर्स लिख के भेजो। ऑथराइज्ड बाय विक्टोरियन गवर्नमेंट मेलबर्न।
1: मौसम कोई नवा आया, मैं पहली बारी वेख्या, आसमां तो नशा आया।

प्यारे सुत्यो, आज दे इस दो घंटे की सवेर में असं खबर भी सुनिया, मन की गल भी की, घर के भविख के प्रैशर बारे भी सोचा, तो एक छोटी जी कहानी भी तुहानू याद करवाई, तो असी भी याद की। हर क्वाइट सीजन खाली नहीं हुंदा, अज की एक कहानी सानू सुनेहा देती है। तो अज की आखिरी लाइन अपने दिल विच जरूर रखियो, जे अज जिंदगी हौली चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुसी पिछे रह गए हो सकता है तुसी अंदरों तैयार हो रहे होवो। अपने दिन नूं शुकर नाल शुरू करो, अपनी बोली नूं नरम रखो, अपने मन नूं हौसला दवो, अते जे दिल भारी होवे तां अपने आप नूं ये जरूर कहो कि मैं हाले भी चल रहा, इसका मतलब मैं हारिया नहीं। तो मैं तुहाड़ी अपनी होस्ट ते दोस्त शमा पंगू तुहाड़े तो इजाजत लेनी हाँ। तो अज की मेरी ये इजाजत मई की आखिरी इजाजत है, क्योंकि फिर मैं तुहाड़े नाल सांझ पाउणी हाँ जून विच। मई का महीना वीरवार के दिन की प्रोग्राम तुसी नहीं सुन पावोगे, क्योंकि मैं लैनियां छुट्टियां, हॉलीडेज़ तो बाद आके फिर तुहाड़े नाल सांझ पावांगे। उदों तक लई तुसी अपना ख्याल रखना, मैनू उड़ीकना, मैं तुहानूं उड़ीकांगी, क्योंकि मैनू बहुत एक्साइटमेंट हुंदी है थर्सडे मॉर्निंग ते मंडे मॉर्निंग, क्योंकि इस प्रोग्राम नूं तुसी सुनदे हो सोमवार सवेरे 10 बजे तो लैके 12 बजे तक, ते वीरवार नूं सुनदे हो सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक। 3 हफ्तियां लई मैं तुहानूं बहुत मिस करना, तुसी भी मैनू मिस जरूर करियो। ते मिलदे हां फिर जून दे पहले हफ्ते, उदों तक लई रब राखा, अपना ख्याल जरूर रखियो, ते सुनते रहो सांझीवास रेडियो, आवाज़ दिलां दी।